0: से प्रसिद्ध पहनों में विदुषी श्रीमती विष्णु वटला कृष्ण वेणी के साथ आगे का अभ्यास जारी रखा। बाद में इन्होंने सुप्रसिद्ध हैदराबाद ब्रदर्स में से विद्वान डी राघवाचारी के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारा। 6 साल की छोटी उम्र में प्रथम प्रदर्शन देने वाली इस बाल कलाकार ने आंध्र प्रदेश के सरकार से प्रतिष्ठात्मक बाल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के CCRT के द्वारा वरिष्ठ छात्रवृत्ति प्राप्त किया। उसी वर्ष में आकाशवाणी के राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में शास्त्रीय भक्ति संगीत में प्रथम पुरस्कार और कर्नाटक शास्त्रीय गायन में द्वितीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। ये आकाशवाणी में पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी पीढ़ी की गायिका हैं। इन्होंने प्रख्यात सभाओं में, प्रतिष्ठात्मक संगीत उत्सवों में और भारत के अग्रगामी सांस्कृतिक संस्थानों में प्रदर्शन दिया है। इन्होंने कर्नाटक गायन में और वायलिन में डिप्लोमा के साथ साथ संगीत में MA डिग्री हासिल की है और IIT खड़गपुर में MBA डिग्री भी प्राप्त की है।
1: श्रीमती सात्विका मोहन इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन एंड एन अकम्प्लिश्ड कर्नाटिक क्लासिकल वोकलिस्ट एंड वायोलिनिस्ट। शी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग अंडर श्रीमती वी ललिता फॉलोड बाय एडवांस्ड ट्यूटेलेज अंडर विदुषी श्रीमती विष्णु भट्ल कृष्णवेणी of the renowned Vishnu Bhatla sisters and further advanced guidance from Vidwan Sri D. Raghavachari of the illustrious Hyderabad brothers, a child prodigy who presented her maiden concert at the age of 6. She was conferred the prestigious Balaratna title by the government of Andhra Pradesh. She is a recipient of the senior scholarship in Carnatic vocal music awarded by the CCRT, Ministry of Culture, Government of India, and achieved national distinction by securing first prize in classical devotional music and second prize in Carnatic classical vocal music at the All India Radio National Music Competitions in the same year. Becoming a second generation Akashvani National Prize winner, she has performed extensively at eminent sabhas, prestigious music festivals and leading cultural institutions across India. She holds diploma in Carnatic vocal and violin, an MA in music and an MBA in human resource management from IIT Kharagpur.
0: आज रात के इस कार्यक्रम में आपके साथ संगत करने वाले कलाकार हैं, वायलिन पर श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: In tonight's broadcast, श्रीमती सात्विका मोहन is accompanied on violin by श्री ओ राजशेखर, on मृदंगम by Vidwan Peravalli Jayabhaskar and on Ghatam by Sri M. Chandrakant.
0: Shrimati Satvika Mohan apne gayan ka aarambh Tyagraj ki ek kriti se kar rahi hain, jo raag Hamsad Dhwani tatha Adi Taal mein nibadh hai.
1: Shrimati Satvika Mohan begins her vocal recital with a composition of Tyagaraja Swami in the raag Hamsad Dhwani set to Adi Taal.

0: अब आप सुनेंगे त्यागराज स्वामी की एक कृति जो राग आनंद भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ त्यागराज स्वामी इन द राग आनंद भैरवी सेट टू आदिताल।

0: श्रीमती सात्विका मोहन अपना गायन जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करेंगी नारायण तीर्थ द्वारा रचित एक तरंगम, जो राग बिलहरी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर वोकल रिसाइटल, श्रीमती सात्विका मोहन विल नाउ प्रेजेंट ए नारायण तीर्थ तरंगम इन द राग बिलहरी सेट टू आदि ताल।

0: अब आप सुनेंगे मैसूर वासुदेवाचार्य की एक रचना जो राग सिम्हेंद्र मध्यमम तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार्य इन द राग सिम्हेंद्र मध्यमम सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: वो था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वाज द तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत।
0: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का समापन श्री कनक दास की एक कृति के साथ कर रही हैं, जो राग सिंध भैरवी तथा खंड चापू

0: इसी के साथ हम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रीमती सात्विका मोहन का गायन समाप्त करते हैं। आज की सभा में उनके साथ वायलिन पर थे श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के प्रसारण कक्ष में इस संगीत कार्यक्रम का ध्वनियांकन किया गया है। ये कार्यक्रम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है।
1: With that, we conclude the vocal recital by Srimati Satvika Mohan in the broadcast of Ravivasriya Akhil Bharati Sangeet Sabha. She was accompanied on violin by Sri O. Rajshekar, on mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar, and on ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashvani Hyderabad for Ravivasriya Akhil Bharati Sangeet Sabha and brought to you from the Delhi station of Akashvani.